ओके जी संगीत का प्रोग्राम ही चुंगी देश ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान और इसके साथ हमारी जितनी भी उर्दू सुनने वाले हैं उर्दू लिस्टर है उसे भी खुश आमदीद हर के लिए हम कहते हैं कि आप लोग भी आया करें हमारी साथ इस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम में अपनी प्यारी सी आवाज को और प्यारी प्यारी अल्फाज को अपनी तरफ से हमारी साथ इस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया करें क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना आप लोगों के लिए भी है। तो कंजूसी बिल्कुल मत करें, अपनी कंजूसी को खत्म करके मिलाए सिपर 335 435 35 15 आप लोग आए हमारी साथ प्रोग्राम में शराकत कर लें क्योंकि हमें भी पता लग जाए कि हमारी उर्दू लिस्टर कितने हैं और कहां कहां से अपनी हमारी शो सुन रहे हैं। ये हसाम लोधी आवाज वहाँ आती है और जाती है मुझे पता है, तो फिर ये कंजूसी खत्म कर लें। मुझे पता है आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आते प्रोग्राम में, इस तरह ना करें यार। देख ले अभी चुप चुप के हंस रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं याद कोई गड़बड़े इस तरह कर लेना कि आप लोग भी यार आए ना हमारी साथ आए, आज अपनी ये खामोशी खत्म कर दें। कब तक खामोश रहोगे, कुछ बोले भी क्योंकि फिर लोग आपको कहेंगे कि खामोश गुल, तो खामोश गुल ना बने, हमारे साथ आए ये अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज को हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बना यार। तो आए ना फिर, फोन को उठाए यार, उठाए ना।

ओके जी, तो इलीफियम दो वानीना हर चीज अपनी वक्त पर अच्छी लगती हो और एक आपका प्रोग्राम हो जो हर वक्त अच्छे लगते है। थैंक यू सो मच एंडी रिजाता मन ने शुक्रिया इली फ्रॉम वाना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज डी मन ने शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कॉल स्टॉप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कोई भी कॉल नहीं ले रहा ना ले लूंगा, क्योंकि जब भी आप लोगों का कॉल आते आप लोग बात ही नहीं करते। जब आप लोग बात नहीं करते तो मैं किसके लिए, किस चीज के लिए कॉल ले लूं, जिसकी भी कुछ भी जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। 0335 435 3515 अगर आप लोगों के साथ नेटवर्क का मसला है तो आप मुझे मैसेज कर ले, प्रोग्राम सुने और मैं जवाब दे दूंगा।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर।

0: और सेहतमंद बाल।
1: अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

खदीर अलावा चिकम ने नो सना और निदा द तलाश ना मैसेज रली गयो बिल्कुल दा एड्रेस चिकम ने दा मुंगते निज दे दे हां वेलकम सही दा इब्राहिम कुंडी द कुंडी कोट ना दुआ सलाम रली गयो वालेकुम सलाम खुशाल हो से हयानूर द फजलेबाद ना फजलेबाद के मेरा उस्ताद सरदेश में तमाम रोड मिला भीगी अस्सलाम वालेकुम विक्रम भाई हसनैन ये मद करक ना उस्ताद सो वालिदी तमे सलाम दे वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम विक्रम भाई आठोला उर्दून को तमे सलाम दे द टैंक ना इश्मा या इकराम भाई सलामुन में कबूल का भाई द टोल ब्लीच में इस्तेमाल करी दी द हर यो ब्लीच द यो बल ने जबरदस्त रिजल्ट इश्मा कॉस्मेटिक जिंदाबाद पाकिस्तान भाई सदाम एंड रमजान प्लाजा की जरबत खान जी सर जमुई शमा प्रोडक्ट मिलावी की पटांग की लकी मरवत की जहांगीर भाई नवरंग मनियारी बाजार के जमुई का मेन डीलर दे बाकी लकी मरवत द बनू द टांक डी आई खान मीर अली मीरान शाह रजमक मकीन वाना वजीरिस्तान सुमरा इलाके दी पदी के हर यो कॉस्मेटिक स्टोर सर जमुई प्रोडक्ट मिलावी की हंगूटल दुआबा कही कचा पखा सदा पड़े चिनार कोहाट अल्हम्दुलिल्लाह दी के जमुई प्रोडक्ट अवेलेबल दी पदी हर इलाके के जमुई अल्हम्दुलिल्लाह डीलर आन दी इकराम भाई साय मायमा और अच्छा साई मा दानूर चे तसली के लिए खोरी पदे पोई नशुम खुशाल होसे खजी टाइम रा सर चकम दे अगर सर तरसी आओ आयजा द सवाबई ना दुआ सलाम रा लीगी वालेकुम सलाम उई जमा पा मख बांदे इकराम भाई लक चापून

0317 070 6075 सिफात कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और जिनको सिफात कॉस्मेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह जिसोर हम प्रोडक्ट्स थी मौसम सर बिल्कुल रिलेटेड बिलखसूस सिफात आमला शैम्पू और सिफात प्याज वाला शैम्पू या सिफात प्याज वाला प्याज यानी कि

अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो बड़ी ज़रूरी बात है वो ये है कि जी आप हमारा जो ये प्रोग्राम है इसके बाद भी बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, मेरे प्राइवेट नंबर पे आ रही होती हैं, तो आपके लिए हमारे दरवाजे न सिर्फ यहाँ इस प्रोग्राम में खुले हैं बल्कि कचहरी में भी आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई फैमिली इशू चल रहा है आपका, तलाक का मसला है, किसी की जायदाद का मसला है, किसी की लड़ाई का मसला है, किसी भी किस्म का, तो हम आपको वो बेहतर वे आउट बताएंगे जिसके जरिए से आपको नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आप फंस चुके हैं इस तरह के मसाइल में तो इंशाल्लाह ताला उनसे निकलने का जो वे आउट है वो हम आपको इस प्रोग्राम के तवसुत से बताएंगे। बहरहाल, ये तो कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी। असल जो चीज है, असल जो मुद्दा है वो क्या है, वो यह है कि सबसे पहले कानून पे आने से पहले जो चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि जी बर्दाश्त। मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करता हूँ कि कानून के साथ साथ उन चीज़ों को भी हाईलाइट करूँ, आप लोगों के सामने वो मामलात रखूँ जो हमारी सोसाइटी में इस तरह से पनप रहे हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो माशरा है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसमें जो सबसे अव्वल दर्जे की चीज़ है वो है जहालत, और उसके बाद जो चीज़ है वो है अदम बर्दाश्त। अब जो अदम बर्दाश्त है वो जहालत के साथ ही पैदा होती है, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। अदम बर्दाश्त और जहालत, इनकी वजह से हमारे माशरे ने जितना नुकसान उठाया है शायद ही किसी और वजह से हमारा माशरा जो है वो उसने उठाया हो। चूंकि जो लड़ाई झगड़ा, जो फसाद, जो कत्लो गारत, जो जमीनों के मसले, दुकानों के मसले, ये सारे अदम बर्दाश्त की वजह से और जहालत और लालच की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो इन मसलों को सबसे पहले तो हमें कोर्ट कचहरी लेके जाना ही नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जी कुछ गिव एंड टेक करके, कुछ ले दे के, या अगर कहीं पे आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है वो नुकसान बर्दाश्त कर लें, अना का मसला ना बनाएं और अपने मामलात को हल करें। क्योंकि जब आप कचहरी आ जाएंगे तो ये छोटा सा मसला जो आपकी 2 या 3 इंच जमीन या मरले की जमीन से शुरू होगा वो कत्लो गारत तक चला जाएगा, और उसमें कितनी कितनी कीमती जानें हम सब के सामने हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। तो बर्दाश्त पैदा करें, अगले की बात को तहम्मुल से सुने, और अगर उस पर कुछ आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कुछ नीचा खुद कर सकते हैं, करके मसले की हल की तरफ आए। अच्छा, अब आते हैं हम जो अभी रिसेंटली, चूंकि मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे हर एक बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, वो बैठा हुआ है और मोबाइल फ़ोन का वो इस्तेमाल कर रहा है। अब चूंकि ये हमारी ईजाद नहीं है मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, तो हम जाहिल कौम तो हैं ही, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है, हम साथ में किसी चीज़ का बकायदा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी नहीं जानते। जब हमारे हाथ में कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले हम उसका नेगेटिव पहलू सामने लेके आते हैं, यानी हम उसका मनफी पहलू अपने सामने रखते हैं, मनफी चीज़ उसके अपने सामने रखते हैं और उसके मनफी पहलू से हम उस चीज़ का इस्तेमाल शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको इंतहाई माजरत के साथ, जैसा कि हमारे पास मोबाइल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है तो सबसे पहले हमारा जो नौजवान जो है जाके पोर्न साइट्स सर्च करता है कि जी मैंने पोर्न वीडियोस देखनी है। उसने ये नहीं देखा कि नासा का क्या कर रहा है, चांद पे लोग चले गए हैं, मरीख पे जा रहे हैं, उसने ये रिसर्च नहीं करनी, उसका इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो नीचे से शुरू होता है, हम नीचे से अपनी ख्वाहिशात को शुरू करना शुरू करते हैं, ऊपर से हम नहीं जाते। अल्लाह ने जिस चीज को सबसे नीचे रखा है हम उल्टा शुरू करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती। तो ये सारे मामलात इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे मसले हैं हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर। तो हमने हर चीज का मनफी इस्तेमाल सीखा हुआ है, हमें उसका जो मुस्बत इस्तेमाल है वो आए ना आए मनफी इस्तेमाल जरूर आता है। हम मनफी इस्तेमाल में बहुत आगे हैं। आप देखें, हम कहते हैं जी अंग्रेज ऐसे नंगे घूम रहे होते हैं, अंग्रेज ऐसे करते हैं, अंग्रेज वैसे करते हैं, अंग्रेज ने मोबाइल बना दिया, अंग्रेज ने मोबाइल बना के इंटरनेट बना के मुसलमानों को खराब कर दिया, ये हमें सुनने को मिलता है। भाई वो अंग्रेज जिसने खुद मोबाइल बनाया, इंटरनेट बनाया, वो अपने मोबाइल इंटरनेट से खराब क्यों नहीं हुआ? आप मुसलमान क्यों खराब हो गए हैं? क्योंकि आपका जहन जो है उसमें फितूर भरा हुआ है, आपकी कौम जाहिलत की तरफ जा रही है। आपने अपनी तरबियत नहीं की, कौम की तरबियत नहीं की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की कि अगर ये मोबाइल फोन है तो इसका मैं पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करूंगा, इसके अंदर मैंने पढ़ना कैसे है, इसके अंदर मैंने यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स कैसे सर्च करने हैं, मैंने चीजें सीखनी कैसे हैं, मैंने चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये हमारा जहनी जो है वो एक खला है, एक फितूर है। तो इसमें गलती अंग्रेज की नहीं, गलती हमारी अपनी है कि हमें इन चीजों को दुरुस्त करने की शदीद अशद जरूरत है कि अगर हम ये दुरुस्त सिमत की तरफ हम नहीं चलेंगे तो मामलात खराब तर होते चले जाएंगे। अब इसी नेगेटिव इस्तेमाल में एक और चीज है
کہ محرم ہو، عید ہو، رمضان ہو، باقی مذہبی تہوار جو مسلمانوں کے آتے ہیں، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے، اسلام دین اسلام جو اللہ پاک کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ہم ہر ایک بندہ اپنے فرقوں میں بڑھ چکا ہے۔ آپ کس سے پوچھیں تو وہ خود کو مسلمان کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ خود کو شیعہ، سنی، سنی میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مماتی، غیر مماتی اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے فرقے بن چکے ہیں۔ تو وہ ہر ایک بندہ اپنی پہچان اس سے کرواتا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مماتی ہوں، میں غیر مماتی ہوں، مطلب ان طرف ہمارا بٹوارا ہو چکا ہے۔ تو اس چیز سے بھی نکلنے کی شدید ضرورت ہے اور برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال، اب سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو اور بھڑکایا ہے۔ محرم ہوگا تو پھر اس طرح کی پوسٹیں دونوں طرف سے، شیعوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے اس طرح کی پوسٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ، خیر یہ پوسٹ کرنا ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا مذہب آپ کی ذاتیات تک ہے، آپ جس طرح مرضی کریں، لیکن آپ نے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہ قانون کیا ہے، اس کے بارے میں قانون کہتا کیا ہے، قوانین کیا کہتے ہیں، ان پہ انشاء اللہ تعالیٰ گفتگو کریں۔

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है, ये आवाज़ है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है, रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तानसेन नशरिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4, Global FM 91 and Radio Aman 88.4 Drunk. भाई जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसर नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है खूबसूरती की। जनाब, एक मरतबा फिर से आपकी समातों की नजर है। जनाब, सुपहर की 4 बज चुके हैं जनाब, और तपती हुई धूप जनाब, इस गर्मी से यकीनी बात है कि सभी सुनने वाले जनाब डेरा इस्माइल खान टांग और पहाड़पुर में सुनने वाले बेतहाशा तंग होंगे, क्योंकि जनाब अचानक कल परसों से पिछले 3 दिनों से जनाब जो गर्मी आई है, गर्मी की जो शिद्दत है जनाब, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ कीजिएगा कि जनाब इस गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आए, क्योंकि जनाब इस तरह की शदीद गर्मी जो होती है ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बहुत सारे मसाइल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। पहले तो मसला पाकिस्तान का बिजली का है कि जनाब बिजली आपको नहीं मिलती है, ठीक है जनाब, आपको मुश्किल से 24 घंटे के अंदर किसी को 4 घंटे मिल रही होगी, तो किसी को 6 घंटे मिल रही होगी, तो ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में 24 घंटे आपको बिजली हो, या 12 घंटे एक दौर होता था जनाब कि आपको जब 12 घंटे जो है हमें बिजली मिलती थी, तो हम तब भी गिला करते थे कि जनाब घंटे के ऊपर घंटा जो है लोड शेडिंग है, अजाब में हम आ गए हैं। और फिर एक दौर आया कि जनाब उसमें 2 घंटे के बाद फिर भी हम तंग होते थे, तो अभी तो वो दौर आ गया है कि 4-4 घंटे बाद, और बाज़ इलाकों में तो जनाब एटमी पावर होने के बावजूद हमारा पाकिस्तान जनाब लोगों को महीने महीने जनाब बिजली की शक्ल तक नजर नहीं आती है। तो जनाब जब इस तरह की सहूलियात ना हो, बुनियादी जो जरूरतें हैं आपकी, ठीक है जनाब, जब वो आपके पास मौजूद नहीं होती, तो फिर आप लोगों के लिए सरदर्द बन जाता है। और इस सूरत हाल में कि जब इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो, छोटे छोटे घर हों और उनके अंदर बिजली का इंतजाम भी ना हो, बिजली भी ना आती हो,

हो, ना पंखे चलते हो, ना चार्जिंग जो है बैटरियां पूरी होती हो, और ना ही एसी चलते हो, तो फिर क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा आपके साथ तिब्बी हालत हो सकती है जिसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। और ये हीट स्ट्रोक जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब शदीद गर्मी की वजह से, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं, अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी वो सूरत हाल जो शदीद बुखार की किस्म में होती है, और बुखार की सूरत हाल में जब आप देखें और आप टेम्परेचर अगर आप करें, तो उस वक्त आपके जिस्म का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 104 फारेनहाइट होता है, 104 फारेनहाइट। लेकिन दूसरा जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आपके जिस्म के टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, और ये खतरनाक सूरत हाल होती है, और इसी को कहा जाता है हीट स्ट्रोक जनाब। तो भाई अगर आपके घर में भी शदीद हबस है, गर्मी है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आपके जिस्म का टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उसके बाद जिस्म ये अहलियत खत्म कर देता है कि जनाब वो अपने जिस्म को ठंडा रखे। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आपका टेम्परेचर गर्मी की वजह से आपके बॉडी का पहुंच गया, तो फिर आपके ऊपर हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है जनाब, एक शानदार किस्म का जो है, हैवी किस्म का आपको झटका लग सकता है। उस झटके से बचने के लिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जनाब आपके जिस्म गर्म हो रहा है और इसका टेम्परेचर वाकई 40 तक पहुंचने वाला है, तो इससे पहले कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, बार बार नहाने की कोशिश करें। ठीक है जनाब, पानी पीने की कोशिश करें ताकि आपके जिस्म जो है वो ठंडा रह सके। इसकी अलामत जो होती हैं, क्या अलामत होती हैं जनाब जब आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है? ठीक है जनाब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मी, बंदे को गर्मी लग गई है, और यही बेसिकली हीट स्ट्रोक होता है जो आपको इस शदीद किस्म की गर्मी में जनाब आन पहुंचता है, जिसमें क्या होता है, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा आपके जिस्म को हो जाता है, जिल्द गर्म होती है, सुर्ख और खुश होना, और पसीना भी आता है, खास तौर पर मुशक्कत करने वाले लोगों को। सर के अंदर शदीद दर्द हो सकता है। ठीक है जनाब, बहुत सारे लोग जो है वो भाप के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो होता। ठीक है जनाब, ये हीट स्ट्रोक का इफेक्ट होता है कि आपको फौरन जो है इस शदीद गर्मी के अंदर आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जनाब, बेहोशी की हालत सी लगती है, सर में शदीद दर्द होता है, उलझन, बात करने में दुश्वारी, रवैये में काफी तब्दीली आ जाती है, उल्टी की पोजीशन, मतली या फिर कैक की पोजीशन होती है, दिल की धड़कन और सांस भी तेज हो जाता है, और बार बार बेहोश होने की इस तरह की पोजीशन होती है। तो ऐसी सूरत हाल में भाई मरीज को या जो बंदा है उसको ठंडी जगह पर मुंतकिल करें, नहाएं, उसको पानी से नहाएं। ठीक है जनाब, इजाफी कपड़े अगर उसने पहने हुए हैं तो उनको उतार दें, ठंडा पानी जिस्म के ऊपर डालें, गीले कपड़े उसके ऊपर डालें। ठीक है जनाब, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये हीट स्ट्रोक की ये अलामत होती हैं जब ऐसी गर्मी के अंदर आपका जिस्म यकदम से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और इसी गर्मी में, जैसे कि ये गर्मी चल रही है जी जनाब, इसी में ये सारा कुछ हो रहा होगा, और आपके घर में शायद इधर उधर कुछ ऐसा आपको फील हो रहा हो कि कोई घर के बंदा ऐसा कोई मौजूद है जिसकी हालत इस तरीके से हो रही है, तो भाई वो हीट स्ट्रोक का जो है शिकार हो चुका है। तो उसके लिए एहतियाती तदबीर यही है कि ठंडी जगह पर उसको मुंतकिल, जिस्म पर ठंडा पानी, ठंडे कपड़े जो है गीले करके उसके ऊपर डालें, ताकि उसकी जो है जिस्म ठंडा हो, जैसे उसका जिस्म ठंडा होगा, टेम्परेचर जहन के अंदर एक बात याद रखिए कि टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, बेसिकली हर घर के अंदर जो है फर्स्ट एड के तौर पर टेम्परेचर भी मौजूद होते हैं, आप उससे बगल में रख के चेक कर सकते हैं कि जिस्म का टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो वो जैसे आप इस तरह की मूवमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली वो नीचे आएगा, और जैसे जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे आएगा, तो बंदे की या बंदी की या पेशेंट मरीज उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तबी हालत होती है, वो बेहतर हो पाएगी।

0: जनाब केसन का टी टाइम है और चाय के कप के साथ जी बिल्कुल आप भी मेरे साथ रहेंगे पूरा 1 घंटा अब से लेकर ठीक 5 बजे तक। और आज मैंने आप लोगों के लिए भाई डेर इस्माइल खान टांक एंड पहाड़पुर के लोगों के लिए एक टॉपिक भी रखा है, मौजूद रखा है। भाई केसन का ये प्रोग्राम है तो थोड़ी आप लोगों के साथ अदर एक्टिविटीज आपके दिमाग को किसी और जगह पर भी हम मुंतकिल करें थोड़ा सा, तो सोचने के ऊपर थोड़ा सा मजबूर करें आपको। भाई टॉपिक आज का हमारे प्रोग्राम का है जिसके ऊपर आप लोगों ने बात करनी है, ठीक है जनाब। और मैं देखता हूँ कि कौन सेंसलेस हो गया है, कौन अपने होश हवास में है और कौन मुकम्मल तरीके पर इस गर्मी के अंदर भी सोच रहा है चाय की, गर्म चाय के साथ साथ। हाँ जनाब, जितनी भी गर्मी पड़ जाए चाय तो गर्म ही होती है जनाब, चाय के अंदर तो कभी बर्फ डालकर आप पी नहीं सकते। तो अगर चाय के शौकीन है तो भाई इस गर्मी के अंदर भी आपको गर्म चाय ही पीनी पड़ेगी। जी जनाब, टॉपिक आज का कौन सा है जिसके ऊपर आप लोगों ने बात करनी है? तो जनाब टॉपिक ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि आपके ख्याल में वो कौन से लोग हैं जो बहुत जल्द बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है जनाब। वो कौन से लोग हैं जो बहुत जल्द जो है बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं, यानी कि बहुत जल्द जो है वो अमीर बन जाते हैं, ठीक है जनाब, बताएंगे आप मुझे। और आपने मुझे ये बताना है कि आपने आज तक अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितने पैसे इकट्ठा किए हैं। तो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, भाई किसी चोर डाकू ने सुन लिया मेरे इलाके के, वो तो मेरे घर आप पहुंच जाएगा कि भाई शबरे उस्ताद के पास जो है 5-6 लाख जमा हुए पड़े हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे हो जनाब, आप लोग बताएंगे कि भाई आपके ख्याल में कौन से वो लोग हैं जो बहुत जल्द बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं, ठीक है जनाब। और साथ में ये भी बताएंगे कि आज तक आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसे जमा किए हैं ना वो कितने जमा किए हैं। हमें ज्वाइन करेंगे आप, हमारा हमें ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर 03444-9366-0344-936-3366। जी बिल्कुल ये नंबर, इसी के ऊपर आप SMS और कॉल करेंगे और हमारे टॉपिक के ऊपर बात भी करेंगे। केसन ऑयल और शैम्पू तो जनाब मार्केट की जान है, नंबर 1 प्रोडक्ट है हमारे और आपके बालों के अंदर जान डालने वाले, आपके बालों को प्यारा बनाने वाले ये ऑयल और शैम्पू की जोड़ी लाजवाल बाकमाल किस्म की है जनाब। और पिछले 4 सालों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की कहानी नहीं है, 1 हफ्ते की कहानी नहीं है, 1 महीने की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों का साथ है। और ये यकीन ये भरोसा जो आप लोगों को दिया है हमने पिछले 4 सालों में, और बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें भाई जिनका ख्वाब था बालों को लंबा करने का, अल्हम्दुलिल्लाह जी उनका ख्वाब पूरा हो चुका होगा, क्योंकि जनाब हम जो प्रोडक्ट आपको बना कर देते हैं और वो ऐसे जानदार शानदार किस्म के प्रोडक्ट होते हैं कि जनाब उनके अंदर मौजूद जड़ी बूटियां यकीनी तौर पर आपके बालों के अंदर जान डालती हैं। और ये जो ऑयल और शैम्पू है भाई बहुत ही अमेजिंग जोड़ी है हमारी, और इनके अंदर जो अज्जा की तादाद है कुल मिला के 30 अज्जा है, ठीक है जनाब, यानी कि 17 अज्जा हमारे तेल के अंदर है और 13 अज्जा शैम्पू के अंदर।
1: पहली किरण जैसे खिलता हुआ नूर, हर पल महके महसूस हो सुरूर,
2: चेहरे की रंगत अब और भी निखरे।
0: जी जनाब चेहरे की रंगत बिल्कुल जी निखरेगी, क्योंकि जनाब गर्मी के अंदर जो आपकी रंगत खराब हो चुकी है ना जनाब, वो अगर कोई चीज ठीक कर सकती है तो वो केसन के प्रोडक्ट हैं। और केसन के प्रोडक्ट्स में जब हम जिक्र करते हैं जनाब चेहरे को धोने वाले प्रोडक्ट्स की, जो धूप के असरात को खत्म करें, जो आपकी रंगत जो है काली हो गई है उसको फिर से रिस्टोर करें और आपकी स्किन को प्यारा और खूबसूरत बनाएं, तो भाई उनके अंदर जो है नंबर 1 पर हमारे पास फेस वॉशेज हैं, जैसे कि हम आपको रिकमेंड करते हैं। आज हम एक जगह पर मौजूद थे तो एक भाई दुकान पर आए पहाड़पुर में, तो वहां पर जनाब एक बंदा जो है ना वो क्रीम खुली हुई लेके, किसी और कंपनी की क्रीम थी जिसके अंदर सीरम भी ऐड था, उसके अंदर कैप्सूल वगैरह भी ऐड थे, और वो वापस लेके आया, ठीक है। तो वो दुकानदार को कह रहा था कि भाई ये मैं, आपने मुझे इतनी बड़ी डब्बी दी, उसके अंदर सीरम भी था, उसके अंदर जो है ये जो है वाइटनिंग कैप्सूल भी थे, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर डाली, और हमने कहा भाई इतना बड़ा डब्बा है जी, इतना बड़ा क्रीम का डब्बा ये तो रिजल्ट देगा, तो मैं तो आपके कहने के ऊपर लेके गया, लेकिन ये तो मेरी बहन का चेहरा जो है और भी खराब हो गया, ये भी किस तरह की चीजें हम बेच रहे हैं ना। तो वो कह रहा था भाई और तो लोग लेके जा रहे हैं, आप पता नहीं आपकी बहन के साथ क्या मसला है, तो वो इस तरह की बातें करने लग गया ना। तो उस भाई को मैंने कहा भाई मैं आपको एक चीज बोलूं, हम इन चीजों को बहुत डीपली जानते हैं, इस शदीद किस्म की गर्मी में जब आप इस तरह की केमिकल से भरी क्रीमें इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी का कसूर नहीं, आपकी अकल सूझबूझ का कसूर है कि इस शदीद गर्मी में भी आप ऑयल से, शदीद ऑयल से बनी हुई क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पसीना आपकी स्किन से जा नहीं रहा, ऑयल आपकी स्किन से जा नहीं रहा, तो वो क्रीम कहाँ रिजल्ट, कहाँ क्रीम अब्जॉर्ब कहाँ होगी मुझे बताओ। कोई भी क्रीम उस वक्त रिजल्ट देती है जब वो जज्ब हो जाती है मुकम्मल तौर के ऊपर। तो इस पसीने और ऑयल के अंदर कैसे क्रीम जज्ब होगी मुझे पहले ये बताओ आप। उसने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा भाई मेरे भाइयों, तो भाई हमारी भी कंपनी का मैंने कहा फेस वॉश है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा गर्मी के अंदर जितना हो सकता है फेस वॉश का इस्तेमाल करें। जितना आप अपनी स्किन को ऑयल फ्री रखेंगे गर्मी के अंदर, ठीक है, जितना आप अपनी स्किन को फ्रेश रखेंगे, ऑयल फ्री रखेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा स्किन जो है वो प्यारी होगी, वो खूबसूरत होगी। तो वो भाई फिर कहने लगे अच्छा जी फिर तो ठीक है, ये आपके आपने कीमती मशवरा दिया है। तो मैंने कहा भाई अगर आप रेडियो सुनते हैं तो भाई ऐसे मशवरे हम हर रोज आपको देते हैं, चार से पांच, वो भी मुफ्त वाले मशवरे। तो ना सिर्फ मशवरे देते हैं बल्कि साथ में आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई कौन सी चीज जो है आप इस वक्त जो है इस्तेमाल कर सकते हैं केसन की, और कौन सी चीज आपको किस मौसम के अंदर जो है अवेयर करनी चाहिए, आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो जनाब गर्मी के दिन चल रहे हैं, अपने झुलसे हुए चेहरे को, अभी आप अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाइए ना, है जी, अभी भी आपको चेहरा गर्म लगेगा, ये झुलसा हुआ चेहरा, तो भाई ठंडी ठंडी चीजें इस्तेमाल कीजिए, जैसे जाफरान से बना हुआ हमारा साबन है, ठीक है जनाब, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके चेहरे को ठंडक सी मिलेगी, क्योंकि जनाब इसके अंदर संदल है, इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर जाफरान है, और हम इसको बोलते हैं केसन का जाफरानी साबन। तो भाई गर्मी से झुलसे हुए चेहरे को अगर आपने ठीक करना है और इस अपनी स्किन को गर्मी के जो नुकसान, जो गर्मी आपकी स्किन को झुलसा रही है,
2: केसन वजह
0: है जनाब, तो वजह आधा तो केसन ही है जनाब। और केसन को जब आप सीरियस लेंगे और केसन की प्रोडक्ट्स को ही आप समझेंगे कि भाई ये वो कंपनी है जो आप लोगों के लिए हर मौसम के मुताबिक आपकी तमाम समस्याओं का हल लेकर हम बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको हर सोल्यूशन, हर फिकर का हल जो है वो आपको केसन नेचुरल पाकिस्तान के पास मिलेगा। तो केसन का ये जो जाफरानी साबन है, ठीक है जनाब, जाफरानी साबन गर्मियों में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप यकीन कीजिए आपके चेहरे के जो झुलसा हुआ चेहरा है, जी बिल्कुल।

जनाब ज़ाफ़रान का जादू जो चमक की सूरत में, जो व्हाइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट की सूरत में, वो आपको बिल्कुल जी जाहिरी तौर पर नजर आएगा जैसे आप केसन ज़ाफ़रानी साबुन का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम भी है, ठीक है जनाब। मौसम जैसे थोड़ा सा अच्छा हो जाए या फिर आपके घर में जनाब एसी की सहूलत मौजूद है तो आप ज़ाफ़रानी क्रीम को भी गर्मी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी के असरात को कम करने के लिए। जबरदस्त फार्मूला है, साथ साथ में हमारे जो फेस वॉश है या फिर अगर सोप के आप शौकीन है, जैसे बहुत सारे हमारे केसन के जो यूजर है वो हमारा एक सोप इस्तेमाल करते हैं जनाब, और वो है मिल्की सोप। तो गर्मी के अंदर जी जनाब गर्मी के अंदर ये दोनों साबुन बहुत ही आपको जबरदस्त किस्म के रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो कुछ लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, हर बंदे की अपनी रूटीन होती है। तो क्या कौन क्या यूज करे जी, अगर फेस वॉश यूज करने वाले हैं तो भाई आपके पास दो फेस वॉश, हमारे वैसे तो चार पांच फेस वॉश है लेकिन आपको इन में हम जो रिकमेंड कर रहे हैं जनाब, एक तो केसन गो पिंपल फेस वॉश जो कि गर्मी के लिए बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे लोग जिनकी स्किन ऑयली है, ऑयल को कंट्रोल करने के साथ साथ एक्ने ब्रेकआउट को रोकने में और आपकी स्किन को गोरा करने में उसका बड़ा किरदार है। दूसरा जो फेस वॉश है जनाब वो है हमारा केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दो फेस वॉश आपको रिकमेंड कर रहे हैं केसन के प्लेटफॉर्म से। नंबर वन ऑयली स्किन वालों के लिए केसन गो पिंपल फेस वॉश, और साथ में जी जनाब अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, नॉर्मल है, टू टाइप है, क्या कहते हैं सेंसिटिव है या जिस भी किस्म की है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। क्या ही अमेजिंग फेस वॉश है जनाब, और आपकी स्किन को बगैर क्रीम के भी आपकी स्किन को व्हाइट करने की महारत रखता है, बगैर क्रीम के। आप यकीन कीजिए ये ऐसा क्लासिकल हमने प्रोडक्ट बनाई हुई है के बगैर ब्यूटी क्रीम के भी आप इस प्रोडक्ट से प्यारे लग सकते हैं, और प्यारे आप क्यों ना लगे जबकि प्यारा लगना

0: जी जनाब, प्यारा लगना तो आप सबका हक है, लेकिन प्यारा बंदा ऐसे नहीं लगता जनाब। उसके लिए तगड़ो करनी पड़ती है, पैसे भी लगाने पड़ते हैं और टाइम भी देना पड़ता है। तो जनाब प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश को ना सिर्फ इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ गो पिंपल फेस वॉश को इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ मिल्की सोप को बल्कि जाफरानी सोप, यानी कि ये चार आर्टिकल जो केसर नेचुरल पाकिस्तान के हैं, वो आपकी गर्मी की वजह से जो आपकी स्किन झुलस रही है उसको बेहतर कर सकते हैं जनाब। और इन्हें जरूर इस्तेमाल कीजिए, और सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं करना, स्किन को तादेर ठंडा रखने के लिए, रिफ्रेश रखने के लिए आप केसन का ब्यूटी स्प्रे जरूर साथ में इस्तेमाल कीजिए, जो कि अर्के गुलाब और विटामिन सी से बना हुआ है। अर्के गुलाब कुदरती तौर पर जनाब आपके चेहरे को तरोताजा रखने में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है, और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर विटामिन सी जो है वो धूप की तपेश, झुलसन और जनाब आपकी रंगत जो काली होगी उसको भी ठीक कर सकता है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे गर्मी के अंदर जनाब? केसन के क्लिंजिंग प्रोडक्ट में से नंबर वन हमारा प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इस्तेमाल करेंगे केसन का गो पिंपल फेस वॉश, साथ में इस्तेमाल अगर सोप के शौकीन है तो केसन का गोट मिल्क सोप या फिर जाफरानी सोप, इन चारों के साथ जब इस्तेमाल कर लेंगे तो साथ में इस्तेमाल करेंगे केसन ब्यूटी स्प्रे, ठीक है जनाब, जो कि 200 रुपए का आपको मिलता है आपके शहर में। चाहे आप मुझे टांग में सुन रहे हैं, पहाड़पुर में सुन रहे हैं, या फिर आप मुझे डेरस मिलखान में सुन रहे हैं, तमाम बड़े कॉस्मेटिक स्टोर, जितने भी बड़े कॉस्मेटिक स्टोर हैं वहां पर जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई दुकानदार ये नहीं कहेगा कि नहीं ये चीजें नहीं बिकती या ये चीजें कोई नहीं खरीदता, आप तन तनहा क्यों खरीदने आए हो, बल्कि आपको बोलेंगे जी बिल्कुल यार, ये तो रनिंग आइटम है, ट्रेंडिंग कंपनी है, और हर दुकानदार के पास टांक, पहाड़पुर और डेर इस्माइल खान, ये तीन बड़े शहर, आपको हर जगह जो है ये नूर से भरपूर प्रोडक्ट मिलेगी जिन्हें आप इस्तेमाल करके 1500 प्यारे लग सकते हैं। और आप प्यारे क्यों ना लगे, जबकि प्यारा लगना तो आप सबका हक है। जी जनाब, ये बताया है केसन ने आपको, और अगर अभी तक लोग आपकी तारीफें नहीं करते हैं तो भाई कहाँ रह रहे हैं आप,
1: गो गो गो
0: डेरा में, टांक में या फिर पहाड़पुर में,
1: पिंपल्स का सिफाया,
0: तो लीजिए केसन, केसन के प्रोडक्ट घर ले आइए और खुद को उन लोगों में शामिल कीजिए जनाब जिनकी ढेर सारी तारीफें होते हैं, जिनके आगे पीछे लोग घूमते फिरते हैं।
1: केसन गो पिंपल से साफ स्किन के नया राज, केसन गो पिंपल एंटी एक्ने फेस वॉश एंड सोप।

0: स्किन के नया
1: जी जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है टेलीनॉर का और जोंग का। टेलीनॉर पर कॉल करने के लिए 03449363666 और जोंग पर कॉल करने के लिए 03137985। आज टॉपिक मैंने आपको बताया है और अंदर कोशिश करेंगे आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए, टॉपिक साथ में जरूर होगा। तो आज के टॉपिक जो है वो ये है कि जनाब आपके ख्याल में कौन से लोग हैं जो बहुत जल्दी पैसा ढेर सारा जमा कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये बताएंगे कि आज तक आपने सबसे ज्यादा जो है कितनी मनी इकट्ठी की है, यानी कि कितने पैसे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। तो जनाब कॉल करेंगे 03449363666 03044936 3366। जी जनाब, इन नंबर पर आप कॉल और एसएमएस, आप लोगों के एसएमएस भी आ चुके हैं। और जनाब गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन
0: हाजमा हो जब अनकंट्रोल, मतलब
1: हाँ जनाब हाजमा हो जब अनकंट्रोल। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, हेलो आके जनाब इनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती, तो फिर से ट्राई करेंगे। कौन है हमारे साथ?
0: हाजमा हो जब अनकंट्रोल, मतलब

0: हाजमा। जी जनाब, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जनाब जनाब मेंबर शाहजहान सर नाल मौजूद इन पहाड़पुर एफएम को सुन दे होए, किवें हाल है सही? चंगे वदे वे सही, ठीक ठाक प्रोग्राम सुन दे पे। गर्मी है तुम्हारे पास है कि ना सही? गर्मी कोनी चलती पी हवा, यानी के तो कोई उम्मीद लगती पी कि मौसम चंगा थी वैसी? ए तो बात दह दीवार या पाई दीवार या वी दीवार बर्दाश्त करने पौसन, औखा सौखा वक्त गुजर वह एक जरूर। ठीक है सही, ठीक है बहुत मेहरबानी सही। आज जैसे टॉपिक ही रखी बैठे हैं ते हाजमा कंट्रोल सिरप सही कितना जरूरी है सारे वास्ते हर घर ही रखना? बेपख्ता ही है। तो तुसा क्या सो कि अगर पेट ही दर्द होवे या हाजमे का कोई मसला होवे सा को डॉक्टर को वंजना चाहिए है या बस सिरप घर ही रखो तो इंशाल्लाह डॉक्टर तो ना वंजना पोसी? हाजमा कंट्रोल सिरप अगर घर च मौजूद है तो पेट ही दर्द थी वंजे या गैस थी वंजे या तेजाबियात या सीने जलन कोई भी मसला थी वंजे विदाउट डॉक्टर से पूछे तो इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह पहली दवा ठीक थी वैसन कि नहीं सही दसो? 15 मिनट सिर्फ सारे मसले मुक वैसन? हाँ हाँ 10 मिनट, यानी कि तुसा आदे के हाजमे का अगर कोई मसला हो तो दोहा सिरप ते फक्की को इकट्ठा खाओ। अरे घर ही जरूर होने चाहिए। तुसा अपने इलाके कोई दोस्त अहबाब को दसेंदे रहंदे वे कि भाई अगर ये सिरप जे रहे हाजमे वास्ते एक नंबर शह आई वदी है मार्केट ही तो अपने घर च रखो, तुसा मैसेज चलाया करा लोगों को आखा ही वैसे बिल्कुल बिल्कुल तुहाड़ा सही जिथे तुस गिनते रहते हो ना शेरवली कुंडी जनरल स्टोर डहोता रड्डा, ठीक है सही? तो वो सारे को माशाल्लाह हूँ कार्टन कार्टन हाजमा कंट्रोल मंगवाते रहते हैं, तुम्हारी मेहनत है लोगों को दसाई वे तो उतु लोग प्रोग्राम सुनते हैं तो जारी गाल वो भी गिनते हैं। तो मैं कोई दसो कि लोग इन जे बहुत जल्दी अमीर थी वेंदे यानी कि बहुत सारा पैसा जल्दी बढ़ा गिनते हैं? जी अच्छा जी, अगर जुलम शुरू कर रहे हो तो बाबा जल्दी अमीर थी वैसो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बरकत ही है कि जरा एक दो प्रोडक्ट और स्टार्ट थी वाली कंपनी आज 3 प्रोडक्ट बढ़ा छोड़े, लेकिन रीजनेबल रेट्स इन सही हर कहती अप्रोच चीन अल्हम्दुलिल्लाह वजह को बरकत ही है। तो जुल्म करो तो वह बरकत तो नहीं होती ना सही, वह बरकत जो ना होती बिल्कुल कोशिश होती है सही, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जेरी प्रोडक्ट ही बनाऊं वो लोगों की रसाई तक होवे तो उन्होंने जेब दुते उनका बोझ ना होवे। बहुत मेहरबानी शाहजहान मेरा, बहुत मेहरबानी सही। जी जी हुक्म मसला अच्छा जी ठीक है चलो ठीक है सही, तो आने ही एक सजेशन सारी को आ गई है सही को जरूर आपने को नोट करने में, ठीक है सही?
1: ओ मेहरबान
0: ओके जनाब, शुक्रिया जनाब शुक्रिया।
2: हाजमा हो जब अनकंट्रोल,
0: हाजमा हो जब अनकंट्रोल। हाँ जी

0: कंट्रोल सिरप।
1: जी जनाब, हाजमा कंट्रोल सिरप केसन का जो है, बाहर की गर्मी तो आपको हमने बताया कि भाई जिस्म की बाहर की गर्मी को आपने अपने ऊपर मुसलत नहीं होने देना, और जिस्म को जो है टेम्परेचर को आपने बरकरार रखना है। लेकिन जो मैदे की गर्मी है जनाब, उसका तोड़ हमारे पास है, वो है केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप की सूरत में। और सर्दियों में भाई तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन गर्मियां तो आपकी इस प्रोडक्ट बगैर नहीं गुजरनी चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, लारा खलील, खैरियत है
1: जनाब? जी शिराज शहानी सर मौजूद हैं आई थिंक।
2: जी सर, जी सर।
1: शिराज भाई की हाल है? तो सर चंगे वे, ठीक ठाक सही, खैरियत नाल?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैर वे, तो ठीक ही वे, खैर
1: से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम सुन दे पे वे। गर्मी तो होसी तुम्हारे पास वे सही?
2: अच्छा, गर्मी दे तो मौसम तो मौसम बिल्कुल अच्छा थी ना, मेला दुकान घूमना हवा शवा गोली पई।
1: अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी गाल सब सुन लो। लेकिन जी मौसम की सूरत हाल है ना, फोरकास्ट जो असा दे पेशन गोई बुध तक मौसम इवे है। अच्छा जी, मेहनत कश तो बहुत सारे बंदे ने, लेकिन नहीं थी अमीर बेचारे। अच्छा जी, हलाल मेहनत बहुत जरूरी डूशी है, बंदा अमीर थी पैसे जल्दी जमा थी। कंजूसी जमा नहीं थी पैसे, कंजूसी करने पैसे जमा नहीं थी। हाजमा कंट्रोल सिरप तो कोई गर्मी च खारी नजर आवेदा कह राजे गफूर तो वेंदे रहंदे लाजमी। हाजमा कंट्रोल सिर्फ हर घर च होना चाहिए भाई। हैं जी,
2: लाजमी भी होवे, एक मुके तो भाई शीशी आई पर लाजमी दूध लाजमी नहीं भाई, तो खड़ी खड़ी होवे,
1: खड़ी खड़ी होवे, क्योंकि गैस दे
2: खास जरूरत है सर जी।
1: हां, क्योंकि गैस, बदहजमी, पेट ही दर्द, इन किस्म दे प्रॉब्लम जे रहे बहुत सारे इवें थिंदे रांदे ता उंदे च अगर तुसा कोई इस्तेमाल करे सो तो डॉक्टर तो तको न वणना पोसी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। शिराज शाहनी थी जनाब पंजाब साइड के ऊपर, और जो पंजाब में हम सुन रहे हैं भाई, हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप मैदे की गर्मी को खत्म करने वाला ये सिरप। जी जनाब, जैसे ही एक ढक्कन जो है अपने अंदर आप हलक में डालेंगे ना, हलक से लेकर मैदे तक जनाब, आपको ऐसे लगेगा नारायण के कान में आ गए आप। हैं जी, इतनी शदीद किस्म की ठंडक पहुंचाने वाला हमारा ये सिरप। और उसके बाद सिर्फ ठंडक तक इसका काम नहीं है, अंदर जाके जनाब इसने जुकाम करना है, एच पाइलोरी जो कि गर्मी के अंदर अपने अंडे दे रहा होता है। ठीक है जनाब, ये जो आपका मैदा खराब होता है, ये जो आपको जो है क्या कहते हैं दस्त वगैरह लग जाते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के मामलात होते हैं, ये एच पाइलोरी एक जरासीम है जनाब, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो जनाब ये उसके ऊपर जाके बहुत बड़ा जो है अटैक करता है। हाँ जनाब, अटैक करता है, सिर्फ ये नहीं कि आपको ठंडा ठार नारायण का गान बनाएगा, बल्कि ये साथ में उन उस इन जरासीम को भी खत्म करने में बहुत भरपूर सलाहियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां पाई जाती है वो बहुत ही जबरदस्त है, एंटीबैक्टीरियल जो जिस तरह मेडिसिन होती है उनकी तरह ये काम करता है। बहुत ही अमेजिंग किस्म के इसके रिजल्ट हैं जनाब, जिसको भी मैदे के मसाइल का जो शिकार है, सीने में जलन होती है, बदहजमी होती है, गैस का मामला है, ठीक है जनाब, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के मामलात हैं, तो आप इस सूरत हाल में केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप मंगवाएं, सिर्फ 150 रुपए का।

0: कंट्रोल
1: जी जनाब, हाजमा कंट्रोल सिरप तो आपने यूज करना ही करना है जनाब। लेकिन स्टार्ट में जो मैं आपके बात कर रहा था जनाब, केसन के जो गर्मी के दिन हैं और इन दिनों के अंदर जनाब, एक तो गर्मी से हम परेशान होते हैं, लेकिन दूसरा जिस चीज से परेशान होते हैं, आप परेशान नहीं होते, आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, वो होते हैं जनाब गर्मी, और गर्मी की वजह से पसीना, और पसीने की वजह से बदबू। केसन के दो परफ्यूम है, अकबर एंड जहरा।
2: वल्ला लाजवाब।
1: जी जनाब, जो कि लाजवाब है। एक कॉलर हमारे साथ हैं,
2: अकबर और जहरा।
1: जी जनाब, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
3: मैं
1: मोहम्मद उजैर। कहाँ से बात कर रहे हैं शहजादे? कौन से रेडियो पैगाम को? पहाड़पुर से हैं आप? अच्छा, हाफिज अब्बास से। ठीक है, हाफिज अब्बास में हमारे हाजी साहब भी तो होते हैं ना, क्या नाम है उनका? हाजी ताहिर। हाजी ताहिर नहीं रहते आपकी जगह, आपकी साइड पर? हाजी ताहिर को नहीं जानते आप उजैर? अच्छा, चलो चलो ठीक है, नहीं जानते होंगे, इतना बड़ा शहर जो है कौन जानता होगा। कैसे हैं आप शहजादे, ठीक हो? प्रोग्राम सुन रहे हो आप? अच्छा, कब से सुन रहे हो? आज सुना है या इससे पहले भी कभी सुना है आपने? पहले से सुन रहे हैं। तो हमारी बातें सुनकर कुछ केसन की कोई चीज आपके घर में आई है अभी तक या नहीं आई?
3: नहीं,
1: नहीं आई।
3: नहीं।
1: क्या वजह हो सकती है? क्या कौन से तवीज करें हम आपके ऊपर कि आप हमारी चीजें खरीद लें? यानी कि इतने सख्त दिल आप कैसे हो सकते हैं कि खलील ताबे शवान की आवाज आप सुने, केसन का प्रोग्राम आप सुने, और आप केसन की कोई प्रोडक्ट ना खरीदे? इतने सख्त दिल तो आप हैं उजैर। मैंने कहा बताओ, मैं कहां से फुल तवीज लेकर आऊं जो तुम्हारे ऊपर करूं और केसन की चीजें लेना शुरू कर दो? आज सुना है आपने? फिर आपने कहा पहले से सुन रहे हो, फिर कहते हो आप अभी सुन रहे हो?
3: क्रीम के बारे आज प्रोग्राम सुना।
1: अच्छा जी, क्रीम के बारे में आज मैंने बात की है वैसे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? परेशान कर दिया मैंने तुम्हें? मैंने क्या परेशान कर दिया मैंने तुम्हें? लड़के परेशान हो गए हो? अच्छा, लग तो रहा है कि परेशान हो गए। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहें और आपको समझ आ जाएगी कि भाई आपके हमारे पास आपके लिए क्या

जनाब अकबर फॉर मैन का मतलब है कि अकबर लड़कों के लिए है, मर्दों के लिए है, और ज़हरा परफ्यूम जो है वो खवातीन के लिए है। तो जनाब इस गर्मी में हमारे इन फेस वॉशेस का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जनाब आपका जितना भी बदबूदार किस्म का पसीना होगा ना, उसकी स्मेल को खत्म करके ये अपनी खुशबू बिखेर देंगे। ठीक है जनाब, गर्मी के अंदर परफ्यूम्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप ऐसा आपका काम है कि आपको हर वक्त पसीना आता है और पसीने के बाद स्मेल का आना जरूरी होता है, तो जनाब हमारा अकबर और ज़ारा परफ्यूम जो है ये स्मॉल पैकिंग में भी है। 10 ml का आपको 250 रुपए का मिलेगा, अकबर भी 250 का है, ज़ारा परफ्यूम भी 250 का है, और अगर आप बड़ी बॉटल खरीदना चाहें तो 1600 रुपए का आपको एक परफ्यूम मिलेगा।

0: women.
1: जनाब अकबर फॉर मैन एंड ज़ारा फॉर वुमेन, ये दोनों प्रोडक्ट जो है क्या कहते हैं, दो परफ्यूम हमारे मौजूद है पहाड़पुर, टांग और डेरे सलमान खान में, हर जगह जहां पर भी आप मौजूद हैं।

तमाम आप लोगों के मैसेजेस जो है वो ढेर सारे मेरे पास आ चुके हैं। आज मुहर्रम के बाद बहुत सारे लोग जो है एक्टिवली हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जनाब सभी को अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और आप बेफिक्र रहें, आपकी हर फिक्र का हाल है केसन के पास।

जी जनाब, आप लोगों के मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 03449363366, 03449363366। और उसके साथ साथ जोंग के ऊपर भी आप हमें कॉल एसएमएस कर सकते हैं, 03137985454। जी जनाब, केसन का मकसद ही खूबसूरती है। केसन का मतलब ही आप लोगों को सेहत बख्श जिंदगी फराहम करना है। अगर आपको मोटापे का शिकार है तो आप इस्तेमाल करें केसन की, वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला फक्की जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाजमे का मसला

0: बदहजमी, गैस और तेजाबियत के मामला अगर आपके पास आपके साथ भी होते रहते हैं तो भाई डोंट वरी जी, आपकी परेशानी का हल हमारे पास केसन हाजमा कंट्रोल सिरप की सूरत में मौजूद है। 150 रुपए का हमारा ये सिरप है जनाब, अपने करीबी दुकानदार से खरीदिए खरीदिए और जनाब अपने मसाइल को कहिए, मैं देखे मसाइल को कहिए। गुड
1: पहली
0: बॉय
1: किरण जैसे खिलता हुआ।
0: जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया अवान। जी जनाब सोनिया अवान हूँ, और ये सोनिया अवान कहाँ से हैं? एक तो हमारी सोनिया आप ही होती है डेरे इस्माइल खान से, और ये है हमारे साथ सोनिया अवान। ठीक है जनाब, ये मैं थोड़ा सा बीजीएम को क्यों कर लूँ, क्योंकि आपके मैसेजेस बहुत सारे हैं, फिर उनको आराम आराम से पढ़ते हैं, सुकून के साथ पढ़ते हैं, ताकि आपको भी सुनने में मज़ा आए और हमें सुनाने में मज़ा आए। ठीक है जनाब, तो सोनिया कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम,
1: हर दिल
0: मैं
1: की
0: सोनिया अवान। मेरे ख्याल से भीख मांगने वाले सबसे ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, और जब भी पैसे जमा करूँ शॉपिंग में खर्च हो जाते हैं, एंड तमाम सुनने वालों को, हाँ जी सुनने वालों को सलाम कहती हैं सोनिया अवान हमारे साथ है, और कहती हैं कि मांगने वाले, पता है आपको मांगने वाले औसतन एक बंदा कितना कमाता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम शॉप पर होते हैं तो बहुत सारे जो है ना मांगने वाले हमारे कस्टमर हैं, मैक्सिमम यकीन कीजिए कोई 12-14 लोग मांगने वाले हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शॉप का सेटअप है बहुत ही प्यारा है और उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है, इतने स्टैंडर्ड की शॉप है इनकी, चीज़ें वो हमसे लेते हैं, फिर हम उनको रियायत भी करते हैं बहुत सारी, और फिर रियायत के साथ उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फिर वो चार और लोगों को भी बताते हैं। तो मैं अक्सर उनसे गपशप लगाता रहता हूँ कि आज कितनी दिहाड़ी की है, आज तो कभी भी मुझे किसी ने 1500 से कम नहीं बताया, 1500, 1800, 1000, 1200, यानी कि 1000 रुपए से नीचे कभी किसी ने नहीं बताया। और जब उनसे उन्हें कहें कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, कहते हैं कहाँ पर सौदे पूरे नहीं होते, कहते हैं कि हमारे तो सौदे पूरे नहीं होते हैं जनाब, राशन पूरा नहीं होता है, यानी कि एक भिखारी 30,000 कमाते ही कमाता है महीने का, 30,000 रुपए। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये जो मांगने वाले हैं ना, क्योंकि आजकल तो 5 रुपए का कोई रिवाज ही नहीं है, 10 रुपए से तो नीचे कोई किसी को नहीं देता ना, तो बकौल उनके कि उनके डेली की जो दिहाड़ी लगती है ना वो जनाब 1,000 से 1,800, 2,000 के दरमियान। शेख अहमद अवान अड्डे से हैं। सलाम खलील भाई, कैसे हो? खुद पैसा जमा नहीं करता, एक दम से पैसा कमाने वाला स्मगलर लोग होते हैं। वाह जनाब, वो कहते हैं कि यार एकदम से जब पैसा जमा कर लेते हैं स्मगलर होते हैं। वैसे ये भी है यार, वैसे हलाल का पैसा इतने जल्दी जमा नहीं होता भाई, ये हकीकत है, हलाल का पैसा बहुत वक्त लेता है जमा होने में, जो हलाल के पैसे है ना सालों लग जाते हैं जमा करने के ऊपर, दो नंबरी के ऊपर आ जाए तो हो सकता है 2-3 साल में आप ढेर सारा कमा लें, लेकिन अगर हलाल कमाने वाले हैं आप, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं जो 4 पैसे कमा के जाऊं मेरे बच्चों के पेट के अंदर जो निवाला जाए वो हलाल का होना चाहिए, तो वो बंदे उसको कई साल लग सकते हैं जमा करने में। खलील भाई, परसों एफएम पर सोनी माहिवाल की कहानी सुन रहा था, आज कोई हीर रांझा की कहानी सुना दो, खान जमान जंजुआ रंगपुर हाफिज अब्बास से। जी बिल्कुल, वो तो कहानियां जो है ना, हीर रांझा की कहानी, शशि पुन्नू की कहानी, हमने सारी सुनाई है। ठीक है जनाब, जितनी भी कहानियां हैं, हीर रांझा, शशि पुन्नू, शीरी फरहाद, ठीक है जनाब, सोनी माहिवाल, मिर्जा साहिबा, ठीक है जनाब, शाहजहान और उनकी जो बोलती, यानी कि हम कुछ 14-15 कहानियां आपको केसन हेयर केयर जोड़ी के साथ सुना चुके हैं। चलो जी, उनको रिपीट भी कर लेंगे, वो हम सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक दफा फिर से रिपीट में हम आपको उसी रेफरेंस के साथ, ये जो हम आपको कहानियां सुनाते हैं ना, ऐसे नहीं सुनाते भाई, ये जो आप उस दिन रिकॉर्डिंग शायद लैला मजनू की चल रही होगी पहाड़पुर में, तो बेसिकली हम ये बताते हैं कि जिस तरह वो कहानियां अमर हो गई हैं, जोड़ियों की कहानियां, ठीक है जनाब, कहानी कभी भी जोड़ी के बगैर मुकम्मल नहीं होती है ना, तो जिस तरह उनकी कहानियां अमर हो गई हैं और आज तक हम उनको पढ़ते हैं, वजह यह है कि उनके अंदर जो है इखलास था, कुर्बानी का जज्बा था, खालिस्पन था, तो वही खालिस्पन केसन की हेयर केयर जोड़ी के अंदर, यानी कि ऑयल और शैम्पू की जोड़ी के अंदर मौजूद है, और उसी के तवसत से हम आपको ये कहानियां सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मोमिना टांग से, FM 88 पर आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, और शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने वाले लोग जल्द अमीर हो जाते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता कहाँ से मिलेगा हमें? शॉर्टकट बिल्कुल जी, शॉर्टकट जो अपनाते हैं वो जल्दी नाकाम भी हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर सही तरीके से कारोबार करता है और वो अगर 2-3 साल के अंदर बहुत बड़ा ऐलान करता है कि भाई उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, वो कामयाब हो गया, तो वो वक्ती है। हाँ, अगर कोई बंदा 10 साल से कारोबार में लगा हुआ है और 10 साल बाद वो कोई मकाम बना लेता है, तो आप उसकी बात के ऊपर यकीन कर लें कि वाकई उसने स्ट्रगल करके जो है आप अपना रास्ता बना लिया है, और ये वो रास्ता है जो यानी कि उसने देख लिया है कामयाबी का रास्ता। उसे इतना वक्त लग सकता है, लेकिन 2-3 साल वाला वो शॉर्टकट होता है। अस्सलाम वालेकुम केटीए, क्या हाल है? अनीसा टांग से हूँ। केसन तेल नहीं सोना है, और सच में आजकल डॉक्टर बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं। लास्ट में महानूर को और सब सुनने वालों को सलाम। ये जो अनीसा कह रही है ना टांग से, मैं कहता हूँ कि टांग के अंदर बालों का जितना बड़ा मसला है ना, शायद डेरा में उतना ना हो, शायद पहाड़पुर में भी उतना ना हो, जितना बड़ा मसला बालों का टांग के अंदर है, क्योंकि वहां का पानी खराब है। ठीक है जनाब, हार्ड पानी है, नमक वाला पानी है, खारा पानी है, जिससे बालों की साख्त खराब हो जाती है। तो इन खराब बालों को टांग वालों, आप यकीन कीजिए, ये आपके इलाके की हमारी एक बहन है, अनीसा इनका नाम है, और इनकी दोस्त एक होती है महानूर डेरा में, उन्होंने इस नशे के ऊपर लगाया इनको कि भाई केसन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो आई थिंक पहले भी इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन तो अभी तो इनका अपना शहर टांग जो है केसन ऑयल और शैम्पू से भर चुका है, तो अब इस्तेमाल कर रही है, और कहते हैं कि सच में ये तेल नहीं सोना है। ये हमने इसकी टैग लाइन ऐसे नहीं बनाई थी कि ये तेल नहीं सोना है, इसके अंदर हमने कुछ मैजिक डाला, कुछ जादू डाला, और हमने कहा कि भाई जो बंदा इसको इस्तेमाल करेगा ना, तो उसके बाद उसे लगेगा कि ये तेल नहीं, ये तो वाकई सोना है। तो मानूर को सलाम कह रही है, मानूर को आपने हमारा सलाम कहना है, क्योंकि मानूर आजकल मिसिंग है हमारे शो से। एंड उर्दू वाली मानूर जो है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर है, क्योंकि हमारे 91 के लिसनर हैं, बहुत पुरानी लिसनर हैं और रीसेलर हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स को दूर दराज तक मशहूर करने वाले हैं। सलाम भाई, कैसे हैं? केसन जोड़ी जो है वो कितने की मिलेगी? तो वालेकुम सलाम, आप जो भी हैं, केसन जोड़ी जो है, दो जोड़ियां हैं हमारी, एक छोटी जोड़ी एक बड़ी जोड़ी। जो छोटी जोड़ी होती है ना, उसके अंदर होता है छोटा तेल और शैम्पू, हमारा एक ही है शैम्पू, दूसरा नहीं होता है, ठीक है जनाब। तो छोटी जोड़ी आपको जो है 750-800 में मिल जाएगी मार्केट से, केसन शॉप पर ही आपको 750 की मिलती है, ठीक है जनाब। एंड जो बड़ी जोड़ी है, बड़ी जोड़ी में क्या होता है, बड़ी जोड़ी के अंदर बड़ा ऑयल होता है और बड़ा शैम्पू होता है, वो आपको मिलती है 950 रुपए के अंदर, 950 और 750, ठीक है जनाब। ये अगर दोनों चीजें लेंगे तो हो सकता है आपको इसी, हो सकता है 50-60 रुपए का फर्क हो। अब मैं आपको केसन शॉप का रेट बता रहा हूँ, 750 छोटी जोड़ी और 950 बड़ी जोड़ी का रेट है, ठीक है जनाब। अदर शॉप के ऊपर हो सकता है लोग 50 आपसे ज्यादा ले लें, लेकिन इससे ज्यादा फिर भी नहीं लेंगे। तो भाई छोटा ऑयल कौन इस्तेमाल करे, बड़ा कौन इस्तेमाल करे? जिनको हेयर फॉल का मसला है तो वो छोटा ऑयल खरीदे, उनका हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन जिनको बालों को लंबा करने का जो है शौक है और बालों को लंबा करना चाहते घना करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, तो आप बड़ा ऑयल जरूर लीजिए। हमारे साथ जो है नूना सेठ है पहाड़पुर से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, तुसा सुनो, तुसा ठीक बते वे? अच्छा जी, प्रोग्राम सुनते पे असा लोगों को पूछी पे भाई बंदा अमीर किवें बन सकदे जल्दी जल्दी?
2: अमीर सही सर जी की सकदे जो कोई कंजूसी करन नहीं पोसी।
0: अच्छा कंजूसी करन ते ओ दादर शिराज शहानी आदे पेन के भी जेरा कंजूसी करन दे उंदे मजीद ज्यादा लग देन 4 रुपए।
2: अच्छा
0: जल्दी अमीर थी वास्ते या चोरी करे या बंदा वत कंजूस बन वजे?
2: जल्दी سکون والا گھر جو پیسے آوے تو سکون والا تو کجو سی کرے جو بھائی اوپر شخص ما امیر تیوا تا کہنا دا کا بندہ مارے
0: وڈا کے مارن تے اج کل جے رہن خفیہ کیمرے لگے پے ہون دین چوری تھوڑے ٹھیک ہیں اج کل بیچارے انہاں دا تے رسک مارا نہ گیا چوراں دا
2: نہیں نہیں کو نہیں مارا وتا
0: اچھا وہ اپنے کام تے لگے ودل چلو ٹھیک ہے بیا کوئی حکم سے کال کیتی ہے تو سائیں سادو
2: مسئلہ
0: ہوں بندہ آپ اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے چلو بات بہت بہتری آ گئی سائیں ہاں جی ہاں ہاں صحیح ہے چلو ٹھیک ہے چنگے کیتا ویسے سب کچھ چنگا لگے تو سب کو مل پائے بہت مہربانی سائیں بہت مہربانی شکریہ نونا سیٹ پہاڑ پور کو ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ان کے رشتے دار کو یہی مسئلہ تھا جو بتا رہے تھے اور انہوں نے پھر استعمال کیا کیسن شفا درد آئل جو ہے جناب ایک اتنا میجیکل قسم کا ہم نے آئل بنایا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور ترتیب سے استعمال کرتے ہیں اکثر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے دن میں 2-3 مرتبہ مالش کرنا وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں کہ بس گھر کا پیشنٹ جو ہے گولیوں پر رہے تو بس ٹھیک ہے کون 3 دفعہ خدمت کرے تو بھائی آپ یقین کیجئے اگر آپ تھوڑی سی اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو 2-3 مرتبہ ڈیلی گھٹنوں کے اوپر کمر کے اوپر ٹھیک ہے نا کندھوں کے اوپر یا جوڑوں کا جو بھی مسئلہ ہے اس میں مالش کر کے دیں گے تو آپ یقین کیجئے ان کی زندگی کے اندر سکون آئے گا اور پھر آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی ایسی دعائیں کہ جن کے ثمرات بغیر چوری کے بھی آپ کو امیر بنا سکتے ہیں بغیر کنجوسی کے بھی آپ امیر بن سکتے ہیں کم وقت کے اندر بھائی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ سوری جی ایس ایم ایس ہے السلام علیکم and I am Hira from Pahadpur sir ji show acha hai and topic par ye kahungi ki jo log mehnat karte hain aur waqt ko zaya nahi karte wo bahut jald bahut sara paisa jama kar lete hain aur maine aaj tak apni zindagi mein acha ye dusra part jo hai main aap logo se pata karna bhul gaya Hira hamara show jo hai bahut hi اٹینٹیولی سن رہی ہیں تو ان کو بھی نیکسٹ پارٹ بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اب تک کتنے کوئی پیسے آپ لوگوں نے جمع کر لیا ہے ٹھیک ہے جناب تو کیا زیادہ سے زیادہ اپنی پاکٹ منی بچا کر 5,000 روپے اکٹھے کیے ہیں اب تک اس سے زیادہ یہ اکٹھے نہیں کروائی ہیں بھائی ٹھیک ہے قدرت چلو جی انہوں نے بتا دیا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی السلام علیکم ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو اچھا جی پھر سے کال کیجئے گا ہمیں اور یہ پہلے کالر کی طرح ان کی آواز بھی ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے اور کون ہے جی جناب ہاں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اظہر پہاڑ پور سے بہت شکریہ السلام خلیل بھائی کیسن آئل شیمپو کی جوڑی کتنے کی ہے پہلے بھی آپ نے پوچھا اور ایک دفعہ پھر سے آپ نے میسج کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جناب 750 روپے کی چھوٹی جوڑی آپ کو ملے گی 950 سے 1,000 کے درمیان آپ کو بڑی جوڑی ملے گی ٹھیک ہے نا بڑا آئل اور بڑا شیمپو تقریباً 1,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا 950 سے 1,000 اور چھوٹی جوڑی جو ہے وہ 750 سے 800 کے درمیان میں آپ کو ہر جگہ سے ملے گی کہاں سے ملے گی اگر آپ مجھے ٹانک میں سن رہے ہیں جناب ٹانک میں سننے والوں کو جناب منصور جنرل اسٹور ٹانک میں ہے جناب وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے ہماری پروڈکٹ ملیں گی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا اس کے علاوہ ٹانک میں ہر چھوٹے بڑے دکان جتنی بھی ہے جیسے کہ ارباب جنرل اسٹور ہے ارباب کاسمیٹک اسٹور ہے عمران کاسمیٹک اسٹور ہے عبداللہ جنرل اسٹور ہے سٹی جنرل اسٹور ہے فیصل گفٹ سینٹر ہے کراچی گفٹ سینٹر ہے دبئی گفٹ سینٹر ہے ان سب کے پاس آپ کو پروڈکٹ ملیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں السلام علیکم جناب ٹھیک ٹھاک تو سے سناؤ صحیح ٹھیک ٹھاک چنگے ودے بھی ماشاء اللہ
2: جی الحمدللہ
0: اچھا چلو اچھی گال ہے
2: ਬਾਕੀ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਕਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਦਾ ਸਰ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੰਧਾ ਮਰੇਂਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਗਰਾਤੀ ਹੋਏ
0: ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੈਨੇ ਪੈਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਇਲ ਤੇ ਜੋੜੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ
2: ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲਾ ਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਘੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਘੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਨ ਦਾ
3: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: जमजम हियर शैम्पू एंड जमजम हियर ऑयल जमजम हियर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځیږي ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل جهایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پتہ یاد ساتئی فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

अगरचे घरचे हम कुछ भी नहीं है लेकिन, घरचे हम कुछ भी नहीं है लेकिन, सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। डियर सामीन और डियर नाजरीन, एक और शेर किसी ने मुतालबा किया था कि सर आप दोबारा पढ़ेंगे, तो दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। वो सरायकी का शेर था कि सर आप सरायकी के शेर नहीं पढ़ते। मैंने कहा पढ़ा था का फिर सुना दें। हशर दे डिहाड़े भरे मेल दे विच, हशर दे डिहाड़े भरे मेल दे विच, तैकू जिंदगी दा कसीदा सुने सूं, इवें कौन पुत्रां को खूच सटेंद है, तैकू खुदकुशी दे उथई हाल डेसूं, फी अमानिला हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।